खाई हथ छुरी जग कसाई नील वस्त्र पैर होवे प्रवाण मलेश तहां ले कुजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौंके उपर किसे ना जाना देखे चौंका कड्डी कार उपर आए बैठे कुड़ियार मत पिटे वे मत पिटे इहवन साडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच तिहाई है सोच होवे ता सच पाई पौड़ी चिते।

जाए, सुचे अगे रखियो कोई ना पिटियो जाए, सुचा होए के जेवे अलग अपन सलो, बहुत ही जस्टिया।

नानक फिक्के बोलिए तन मन फिका होए फिको फिका सदिए फिके फिकी सोए फिका दरगे सटिए मोचुका फिके पाए।

0: पौड़ी वडी वडा पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक न जपन करतबा जिया अंदर जियो सब किस जान ला सब किस तेरे बस तेरा कर पला तेरे कर आनंद वधाई तुद कर मान महता तेज अपना अपजर सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दास दास तुद आगे बिनवता
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोई दाई दाया खेले सगल जगत।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक चक्र चिहन यर भरन जात यर पात नहन जेह रूप रंग यर रेख पेख को कह न सकत केह अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहे साहण गण जैन त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत पय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम भरनत सुमत एक मन पुरख त्याए बरदाता संत सहार सदा बिखियाता तास चरण ले हृदय बसावा तौ परम गुरु नानक गुण गावा गावौ गुण परम गुरु सुख सागर दुरत निवारण शब्द सरे गावह गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान तरे गावह इंद्राद भगत प्रहलादिक आत्म रस जिन जानियों कब कल सुजस गावौ गुर नानक राज जोग जिन माणियो हरणखी कु सच वैण सुनाई जो तौ करे उदाहरण सुंदर बचन तुम सुनहो शबीली फिर तैडा मन साधारण दुर्जन से तीन हो रचायो दस विखा मैं कारण ओणी नाही चोणी नाही नाही किसे वे होनी फिर शैल शबीला छड गवायो दुर्मत कर्म वे होनी नाहौ पुली नाहौ चुकी ना मैं नाही दोसा जित हौ लाई तित हौ लगी तू सुन सच संदेसा साई सुहागण साई भागण जय फिर कृपा तारी फिर औगण तिसके सब गवाए गल से ती लाए सवारी कर्महीन तन करे विनंती कद नानक आवै वारी सब सुहागण मान है रलिया एक देव रात मुरारी लिखे कत हे ना छूटिए खिन खिन फूलन हार बखसन हार बखसल नानक पार उतार सुकह टल गुर सेविय
अहनिस सहज सोभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफतक समधि नूर अर सह कुर सह चटिया तुद डठे सच पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोइया सब ना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोइया सब ना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सलोक महला पहला सतगुर भीख्या दे मैं तू समर्थ दातार हाँ मैं गर्व निवारिया काम क्रोध अहंकार लब लोभ पर जालिया नाम मिले आधार सतगुर भीख्या दे मैं

काम क्रोध अहंकार लब लोभ पर जलिया नाम मिलया धार एहनिस नवतन निर्मला मैला कबहू न होए नानक एह बिद छुट्टी नदर तेरी सुख होए महला पहला इको कंत सबाइया जित्ती दर खड़िया नानक कंत रतिया पुछ बतड़िया महला पहला सब कंत रतिया मैं दोहागण कित मैं तान अवगण इतड़े खसम न फेरे चित महला पहला हाँ बलहारी तिन कौ सिफत जिनां दा वात सब राती सोहागणी एक मैं दोहागण रात पौड़ी दर मंगत जाच दान हर दीजै कृपा कर गुरमुख लेहो मिलाए जान पावै नाम हर अनहद शब्द बजाए ज्योति ज्योत धर हृदय हर गुण गाए जय जय शब्द हर जग महवरत आप हर स्थिति प्रीत कर जग महवरत आप हर स्थिति प्रीत कर वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक महला पहला सतगुर
ਭਿਖਿਆ ਦੇਹਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਦਾਤਾਰ ਹਉ ਮੈਂ ਗਰਬ ਨਿਵਾਰੀਐ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਲਭ ਲੋਭ ਪਰ ਜਾਲੀਐ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਆਧਾਰ।

सलल निवास जैसे मीन की ना कटे रुच दीपक प्रगास प्रीत कटे ना पतंग की कुसुम सुवास जैसे त्रिपत ना मध्य पको उड़त आकाश आस कटे ना बिहंग की कटा कनक हो कटा कन कोर मोर चात्र करी दे उलास नाद बाद सुन रत कटे ना कुरंग की तैसे प्रिय प्रेम रस रसक रसाल संत कटत न त्रिसना।

मास जैसे मीन की ना कटै रुच, दीपक प्रगास काटै प्रीत ना पतंग की, कुसम सुवास जैसे त्रिपत ना मदपक उड़त आकाश, आस काटै ना बेहंग की, कटा कन कोर मोर चात्रक हृदय उलास, नादवाद सुन रत कटै ना कुरंग की, तैसे प्रेम प्रेम रस रसक रसाल, संत कटत न त्रिसना प्रबल।

0: और सार न जाना तेरी राम।
1: एक मन पुरख ध्याए बरदाता संत सहार सदा बिख्याता।

तुध आगै बिनवता। श्लोक पवन गुरु पाने पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेल सगल जगत जगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदू करमिया।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमारी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमारे दुष्ट सब तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन कौ आज संघरियै। पूरन होए हमारी आसा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम है छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तुजू करियो रक्षा। राख ले हो मोहे राखनहारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रुन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जाब उदकरख करा करतारा, प्रजा तरत ताब देह अपारा। जाब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंग पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, ओत पुज खान बहोरे रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुआ बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव।
अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगर हो। दुष्ट जिते उठवत युत पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित होय मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह ऐ है। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध करमो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फासते ताहे उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दो

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ सब तो हे बखाने ओ। दोहरा

0: की फतेह।
1: बलो जी वाहि गुरु, एक ओंकार वाहि गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास। राम दासै हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है, जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे है, घर नौ निधि आवै ताए। सब थाई हुए सहाय, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय, दसम पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा

दान भवेक दान विश्वाह दान प्रूसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे पुंगे जुगो जुगिया टल

प्रभ मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रेम भगत अपनो नाम दीजै, दयाल अनुग्रह तारी। प्रभ मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रेम भगत अपनो नाम दीजै, दयाल अनुग्रह तारी। सिमरौ चरण तुहारे प्रीतम, हृदय तुहारी आसा। संत जना पह करौ बेनती, मन दर्शन की प्यासा। बिशरत मरण जीवन हर मिलते, जान कौ दर्शन दीजै। नाम आधार जीवन तन नानक, प्रभ मेरे कृपा कीजै। कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, नेत्र देखह दर्श तेरा राम। लाख जिहवा देहो मेरे प्यारे, मुख हरे आराध मेरा राम। करहो कृपा सर्ब के दाते, एक रूप लेव लावहो। नानक की बेनंती हर पह, अपना नाम जपावहो। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सत गुर कोट पैंडा आगे हुए लेत है। एक बार सत गुर मंत्र सिमरन मात्र, सिमरन ताहे बारंबार गुर हित है। पावनी भगत पाए, कौडी अगर भाग राखै। ताहे गुर सर्ब निदान दान देत है। सत गुर दया निद महिमा अगाध बोध, नमो नमो नमो नमो नेत नेत नेत है। सत गुर दया निद महिमा अगाध बोध, नमो नमो नमो नमो नेत।

बसंत स्वर्ग लोकह जेतते पृथ्वी नावखंडन बिसरंत हर गोपाल नानक ते प्राणी उद्यान परमण बसंत स्वर्ग लोक जितते पृथ्वी नावखंडन बिसरंत हर गोपाल नानक ते प्राणी उद्यान परमण कौतक कूड तमाशिया चित न आवसनाउ नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाउ पौड़ी महापयान उद्यान नगर कर मान्या झूठ समगरी पेख सच कर जान्या काम क्रोध अहंकार फिर है देवान्या सिर लगा जम डंड ता पशुतान्या

श्लोक राजकपटं रूपकपटं तनुकपटं कुलगर्भतः संचन्त विखया शलं सिदरं

राज कपटं रूप कपटं तन कपटं कुल गर्भ तह संचन्त विखिया शलं सिद्रं

ए खंदड़ों की पुल तुम दिसम सोहना अड नल हंदड़ो मुल नानक साथ न जुलई माया पौड़ी चल दिया नाल न चले सो क्यों संजिया तिसका कहो क्या जतन जिसते वंजिया हर बिसरया क्यों।

प्रभु छोड़ अन लागै नरक समंजिया हो कृपाल दयाल नानक पौ पंजिया प्रभु छोड़ अन लागै नरक समंजिया हो कृपा

आपने आप साजी आपने रचियो नाओ ये कुदरत साजी करासन डिठो चाओ दाता करता आप तुसने वे करे बसाओ तू जानो सबसे दिल ऐसे जिंदकवाओ कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ।

परमताम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेसुमार सरबर को काहे जियो। सुथरचित भगत हित पेख तरयो हर नाक सरयो नख विदार जियो। शंख चक्र गदा पदम आप कियो छदम अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौन ताहे जियो। सत साच श्रीनिवास आद पुरख सदा तुही।

ब्रह्मा विष्ण श्रेतगण तिनको मोह पया मन मदका। 84 लाख जोन उपाय रिजक दिया, सबू को तदका सेवक कै भरपूर जुग जुग। वहा गुरु तेरा सब सदका, सेवक कै भरपूर जुग जुग। वहा गुरु तेरा सब सदका।

निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर गंभीर अथाह आत बड सो पर सदा सब बिदरत नागर संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर काल जुग दूरत दूर कर बेको दर्शन गुरु सग

अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसमदी नूर अर सोह कुर सोह चटिया तुद डिठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर शाह दशाह हो जिस पास बैठिया सोई सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर शाह दशाह हो जिस पास बैठिया सोई सबना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कुटुंब सहत सियो जित हुण खसम ना पाया पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवे अहला जन्म गवाया त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कुटुंब सहत सियो जित हुण खसम ना पाया पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवे अहला जन्म गवाया दूजा पाओ ना दे लागण जिने हर के चरण विसारे जग जीवन दाता जन सेवक तेरे तेन के तै दुख निवारे रहाओ तू दयाल दया पत दाता क्या एह जंत विचारे मुक्त बंद सब तुझते होए ऐसा आख बखाने गुरमुख हो वै सो मुक्त कहिए मन मुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागे सदा रहे हर नाले तेन की गहन गत कही न जाए सच्चे आप सवारे परम पुलाने से मन मुख कहिए है ना
जिसनो नदर करे सोई जन पाए, गुर का शब्द संभाले हर जन माया माहे निस्तारे, नानक पाग होवे जिस मस्तक काल है मार बिदारे, जिसनो नदर करे सोई जन पाए, गुर का शब्द संभाले हर जन

0: अपराधी दुना में जो हंता मिर गए, शीश नुआ क्या थी है जा। सुधी जाए महला पहला
1: और पुस्तक संध्या बादंग सलपुर सबगल समादंग मुख चूत विभूखण सारंग त्रैपाल तिहाल विचार गलमाला तिलक ललाटंग दे धोती बस्त्र कपाटंग जे जांच बरमंग करमंग सा फोकट ने चौक।

बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास। रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद ना। सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधि आवै ताए। सब थाई होए सहाए दसवें पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाए दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा

0: अंतर पूजा पढ़े कते बांसन जतुर का पाई छोड़ी ले पखंडा नाम लिये जाय त्रंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवार श्री बगाय तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पुरे ना दियो ना पिया वे साध